0: मॉर्निंग बेस विक पार्क रिक्वेस्टिंग रेडियो चेक ओवर.
1: ये विक पार्क लाउड एंड क्लियर.
0: लाइक वाइज दिस विक पार्क.
1: Yeah, loud and clear, thank you.
2: Yes, I'm fine. Thank you.